मन तन तेरा तन भी तेरा तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा जियो पिंड सब रास्त मारी तेरा।

भी ऐसा होना चाहिदा है। जिस पासों जदों भी जरूरत होवे मंगया जावे ते मिल जावे। ओ शाह कैसा के जो जरूरत दे समय कम ना आवे। ते साहिब फरमान करदे हन कि ऐसा शाह इको इक परमात्मा है, जदों भी उस पासों मंगया जावे ओ मंगा पूरियां करदा। ऐसे परमात्मा बारे, ऐसे शाह बारे साहिब फरमान कर रहे हन।

दोनों ही बचपन दे इको गुरु दे शिष, बचपन दोना दा इको गुरु दे पास गुजरिया, मगर ज्यों ज्यों वक्त बीतदा गया बड़े हो गए सुदामा गरीब रह गया, भगवान कृष्ण महाराजे बन गए, द्वारका नगरी दे मालिक बन गए। ते भाई साहब भाई गुरदास जी ने बहुत गहरे तल ते जाके भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता नू सामने रखदे होए कुछ अपने विचार फरमान कीते हन पौड़ी विच। कहंदे ने कुछ मित्र दादियां निशानियां दित्तियां ने भगवान कृष्ण बारे ते सुदामे दे बारे के किस तरह दी मित्रता सी। भाई साहब फरमान करदे ने बिप सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए, लागू होई बामणी मिल जगदीस दलिद्र गवाए। कहंदे ने विपता दा मारिया दलिद्री सुदामा, सारे कहंदे ने कि ए भगवान कृष्ण जो अज दे मालिक ने ए उना दा बाल सखाई मित्र है। ते एडे वड्डे भगवान कृष्ण महाराजे जेड़े हन, द्वारका नगरी दे जेड़े मालिक हन, अनेकां गरीबां नूं दान करदे हन, सुख दिंदे हन, ते ए बाल सखाई मित्र सताउंदा होया इसनूं सारे कहंदे हन ए बाल सखाई मित्र है, ए सताउंदा है बाल सखाई मित्र, ते फिर भी गरीब है। रोज उसकी पत्नी, क्योंकि ब्राह्मण है सुदामा ते एदी पत्नी नू ब्राह्मणी कहा है, कहंदे ने रोज ब्राह्मणी कहंदी है कि ए सुदामा तू जगदीश नू मिलते सही ओ तेरे दुख दूर कर देवेगा। ते भाई साहब इसे मित्रता दियां निशानियां नू दसदे होए अगे फरमान करदे हन।

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नूं सिंह द्वार किया। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उस नूं होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन अंतरयामी भगवान कृष्ण। दूरों सुदामे नूं देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाईसा फरमान करदे

बड़े ही गहरे जाके, बड़े ही गहरी विचार विच जाके फरमान कीती है। किसे मित्र नू मिलना होवे ते मित्र नाल हाथ मिलाया जांदा है, किसे मित्र नू मिलना चाहे ते गलवकड़ी विच लिया जांदा है, पर किसे मित्र नू मिलना होवे ते अपना सिंघासन छड़ के भी जाया जा सकता है दूरों देख के, मगर भगवान कृष्ण सिर्फ सिंघासन छड़ के सुदामे वाल नहीं वधे। कहंदे ने इतनी निम्रता नाल भगवान कृष्ण वधे सुदामे वाल, और सुदामे दे कोल जाके कहंदे ने सुदामे दी पहले प्रदक्षिणा ले। सुदामा खड़ा है और भगवान कृष्ण ओदी प्रदक्षिणा ले रहे हैं, और प्रदक्षिणा लेके फिर सुदामे दे पैरी पैंदे हन, ते पैरी पै के सुदामे गरीब नू अपने गले लगांदे हन। भाई साहब गहरे तल विच जाके सारे संसार नू ए मैसेज दे रहे हन भगवान कृष्ण दा, क्योंकि सुदामा उना दा बाल सखाई मित्र है, ते बाल सखाई मित्र होने दे नाते ओ दोनों एक गुरु दे शिष्य सन। ते जदों पहली बारी देखिया सुदामा मेरे द्वार ते आया है, कहंदे ने दूरों देखिया, देखते सुदामे वल रहे हन, पर सुदामे दे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। उस गुरु दे जिस गुरु पासों दोना ने बचपन दे विच सिखिया लई है। सुदामे दे विच्चों भगवान कृष्ण अपने गुरु दे दर्शन करदे होए सुदामे वल वधे, ते प्रदक्षिणा लई जिस तरह के अपने गुरु दे ले रहे हन,

अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हैं। जो गुरु दे दर्शन हो गए ते सुदामे नू अपनी गलवकड़ी विच लाया ते कहंदे ने फिर सुदामे नू लेके सिंघासन वल वधे।

मगर भाई साहब भाई गुरदास जी जेड़ी रमज तक पहुंचे कहंदे ने दोनों ही अपने अपने असूल ते कायम। ते ए जानदे होए भगवान कृष्ण कि सुदामा अपनी जबान तो मंगेगा नहीं, ते भगवान कृष्ण ने बड़ा प्यार कीता, परदखना लई पैरी पै के गले लगाया और उदे चरण तो के उसनु अपने सिंघासन ते बिठाया। ते सिंघासन ते बिठान तो बाद उसनु बड़ा प्यार कीता, इतना प्यार कीता। ते प्यार करन तो बाद भगवान कृष्ण कहन लगे, सुदामा बचपन तो हुण जवानी आ गई है, इतनी उम्रा हो गई है, बड़ा चिर होया है मिलिया नू, कोई गुरु दी सेवा दी कथा सुना। गुरु दी सेवा दी कथा दी महानता दर्शा रहे

उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाल जोड़िया। इना दी बाणी दा शब्द है कि शब्द की है, शब्द किस तरह कोट कर्म करोड़ा ही माड़े कर्मा दा नाश करदा है। स्वामी रामानंद जी फरमा

लोगन स्यों मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यों मौला, अलिप्त रहूं जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभु अपना धरता। दीस आवत में बहुत भियाला, सगल चरण की एहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। पूरा

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करता है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवा जो

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोठ महला
1: चौथा
0: चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

नानक सच्चे पातशाह अपनी कृपा करन, क्योंकि उदी कृपा होंदी है तां गुर मंत्र दा सिमरन दा जाप होंदा है। सिमरन दे नाल प्रीति दिनो दिन वधदी जांदी है। परमार्थ विच बरकतां पैंदियां हन तां ए दात मिलदी है। सोए अचिंता, जेड़े प्रभु दा सिमरन नहीं करदे उना लई भी हजूर कहंदे हन, लाज मरे जो नाम ना लेवै, नाम बिहून सुखी क्यों सोवै। एक पासे नाम तो बिना हजूर कहंदे हन, भाई सुख दी नींदर किवें तू सौ सकदा, किवें तैनू खुशियां प्राप्त हो सकदियां हन। दूजे पासे जो जपदे हन, जो करदे हन वाहिगुरु दा शुकराना, हजूर कहंदे हन सोए अचिंता, जाग अचिंता, जहां तहां प्रभ तू वर्तनता। ओ फिर अकाल पुरख वाहिगुरु नूं सदा अंग संग समझदे हन, ते जिन्हां ने अंग संग समझिया उन्हां नूं लोक परलोक दे सुख वाहिगुरु बख्श देंदा है।

एक किस्सा तरती तेन से पानी मन्या गया समुंदर बड़ा वटे एक वरी देवतिया ने विचार कीती देखिए ता सही एडा वड़ा समुंदर है इस विच की चीज है केड़ी केड़ी वस्तु है पर एडे वड़े समुंदर विचों चीजा लभनिया ते ए देखना कि समुंदर विच की है बड़ा औखा सी सलाह कीती सारे क्यों ना समुंदर नू रिड़किया जाए जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी पर लस्सी ते मक्खन आपां नू उदों मिलेगा जदों आपां दही नू रिड़कांगे ते दही नू रिड़कण वास्ते मदानी दी लोड़ है रस्से दी लोड़ है समुंदर नू रिड़कण वास्ते भी मदानी चाहीदी रस्सा चाहीदा पर समुंदर अथाह है एडे वड्डे समुंदर वास्ते लकड़ दी मदानी बनानी बड़ी औखी ता सारियां देवतियां सलाह करके मंदराचल पर्वत नू मदानी बनाया शेष नाग नू रस्सा बनाया शेष नाग नू उस पर्वत दे द्वाले लपेटिया गया एक पासियों उस सप नू देवतिया ने फड़िया एक पासियों दैंता ने देवतिया विच विष्णु भगवान इंदर आदिक देवते ने दूसरे पास से दैंत बड़ी शक्ति ते ताकत वाले एक वरी साप नू शेष नाग नू देवत्या ने अपने वाल खिचिया एक वरी दैंता ने साप नू शेष नाग नू अपने वाल खिचिया ते ओ जड़ा पर्वत सी ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਾਣੀ ਘੁੰਮਦੀ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਦੈਂਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ते सारियां तू पहला जहर निकलिया जहर बड़ा खतरनाक सी धरती ते सुट देने ता नुकसान बड़ा हुंदा है ओ जहर शिवजी भगवान नू पीण वास्ते बेनती कीती गई ओ सारा जहर शिवजी भगवान ने पीता उस जहर दा असर शिवजी भगवान ते भी होया उन्हां दे गले दा रंग नीला पै गया इस करके शिवजी भगवान नूं लोक नीलकंठ भगवान करके भी याद करदे जहर तों बाद अनेकां वस्तुआं निकलियां जिन्हां विच काम तीन गऊ पारजात दरखत लक्ष्मी अनेकां वस्तुआं निकलियां लक्ष्मी नूं विष्णु भगवान जी ने अपना लिया पारजात दरखत नूं इंद्र देवता अपने स्वर्गां विच लै गया जिते अनेकां चीजां निकलियां उथे अमृत दा कड़ा भी निकलिया पर ए अमृत दा कड़ा दैंतां दे हाथ लग गया

लोगों ने समझाया झगड़ा ना कर तेरी घरवाली किसे माड़े पासे नहीं गई सीता जी की सेवा करन गई सी तेनू एक रात बाहर रहन दी इन्नी सजा ना दे एनू घर रख ले पर ओ तो भी ना मने कहन लगा भावे एक रात बाहर रही है मैनू की पता किथे रही मैं ते नाल नहीं सी मैं इसनू घर नहीं रखना नाले मैं कोई रामचंद्र नहीं जिन्हें इन्ना समा पराए मर्द रावण कोल रहन वाली सीता नू अपना लिया मैं इसनू अपने कोल नहीं रखना पावे एक रात बाहर रही इस गल दा पता जदों श्री रामचंद्र नू लगा कि लोकां नू मेरी पत्नी सीता ते शक है कि ए पवित्र नहीं श्री रामचंद्र ने सीता जी नू बनवास दे दिता सीता जी महारिषि बाल्मीकि दे आश्रम रहन लग पए बाल्मीकि दे आश्रम विच सीता जी ने दो बच्चियां नू जन्म दिता लव ते कुश नू ए दोनों लड़के वड्डे होए उधर श्री रामचंद्र ने यज्ञ शुरू कीता अते चक्रवर्ती राजा बनन वास्ते अपना घोड़ा छड़िया ये घोड़ा छड़ना ये हुंदा कि जेड़ा राजा अपना घोड़ा छड़दा जिस जिस जगह वो घोड़ा तुर जावे जो उस घोड़े नू रोकदा कोई नहीं उस जगह दा मालक घोड़े वाला राजा हो जांदा हुण श्री रामचंद्र दे घोड़े नू किस रोकना सी पर जदों ये घोड़ा महारिषि बाल्मीक दे आश्रम कोल पहुंचिया तां इत्थे दोनों भरा लव ते कुश खेड़दे पए सन उन्हां दोनों भरावां ने इस घोड़े नू फड़ लिया।

साहब ने पानी दे विच ऐसी झुब्बी लाई कि दोबारा उत्ते नहीं आए। सारे सुल्तानपुर लोधी खबर फैल गई कि गुरु नानक डुब गए, पर गुरु नानक साहब दे वड्डे भैण जी बेबे नानकी ओ कहन लगे मेरा वीर डुबिया नहीं, क्योंकि मेरा वीर ते डुबदिया नूं तारण वास्ते आया। दूसरे पासे धन गुरु नानक साहब चुभी मारी पानी विच पहुंच गए सचखंड, अकाल पुरख दे सामने खलो के हाथ जोड़े ते नाले

एक गुफा च बह जा। करोड़ा करोड़ा साल हवा खा के हवा पी के तेरा नाम जपा, सुपने विच भी मैं सोवा ना। इन्ना तेरा नाम जपा पर अकाल पुरख तेरे

कीर्तन करने वाला तन गुरु नानक साहब कहंदे ने हौं ढाडी विकार मैं उस परमेश्वर दा ढाडी हां उदा कीर्तन करने वाला पर मैं वेला सी कारे कहंदे ने काम उस

सोत कंदे ने पुत्र तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख नु कहंदे ने ऐ अकाल पुरख तुसा क्या सी मैं अपना सुत दोहे निवाजा पंत प्राचुर करबे को साजा ऐ दुष्ट दमन तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा पहले जन्म दा नाम दुष्ट दमन सी ऐ दुष्ट दमन मैं तैनू अपना पुत्र बना के इस दुनिया ते भेज रहे हैं एक नवा पंथ चलाने वास्ते ऐ अकाल पुरख हुण मैनू दस मैं कहो जी शकल कहो जी सूरत इंसान नूं दिया कहो जिया मैं पंथ

आनंदपुर साहब, धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह दा दरबार सजे है। एक पासे माइया बैठिया ने, एक पासे पुरुष बैठे ने। सिंघासन ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज विराजमान ने। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होए, कीर्तन हो रहे। अचानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने अखां बंद कीतियां सन, अखां खोलियां। एक पहरेदार सिख नूं कोल बुलाया ते कहन लगे, सिखा कुछ दूर दरखत है, उस दरखत दे थले एक सिख बैठा रो रहे है। जाओ उसनू प्यार नाल साडे कोल लै आ। पहरेदार चला गया। दूर दरखत थले सचमुच एक सिख बैठा रो रहे है। अखां बंद नहीं, हाथ जुड़े हुए ने, पर बंद अखां विचों अथरू पै गिरदे ने। ते नाले कह रहे है, ऐ सच्चे पातशाह मैं की गुनाह कीता है, की पाप कीता है, काबल तू आया तेरे दरबार पहुंच गया, पर तेरे दर्शन करन दा मैनू हुक्म नहीं। पहरेदार सिख पहला ते सुनदा रहा, फिर मोढ़ा फड़ के हिलाया ते नाले कहा, सिखा तू कोई पाप नहीं कीता, तेनू ते आप कलगियां वाले ने याद कीता। उससे कुठिया अखां पूंजदा होया पहरेदार दे नाल तुर पिया। जदों दरबार विच दाखल होण लगा, इत्थे भी इक पहरेदार खलोता सी। उसने कहा, ए काबल वाला सिख दरबार विच नहीं जा सकदा। नाल आया पहरेदार कहन लगा, ए दरबार क्यों नहीं जा सकदा? तां खलोता पहरेदार कहन लगा, जेड़ा वड्डा मसंद है चेतो, ओदा हुक्म है इस काबल वाले सिख नूं दरबार विच नहीं जान देना। ते सुन के नाल आया पहरेदार कहन लगा, जेड़ा चेतो मसंद दा मालिक है कलगियां वाला, मैनू ओदा हुक्म होया। ते सुन के पहला पहरेदार परां हट गया। सिख दे हाथ जुड़े ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सामने पहुंचे, दर्शन कीते, अखां विचों अथरू वगन लग पए। तीन दिन हो गए सन रोंदे आ, अरदासां करदे आ, गुरु दे दर्शन कीते, अपना सिर चरना ते रख दिता। ते कलगीधर पातशाह सिर ते प्यार नाल हाथ फेरदे ने, ते नाले बड़े प्यार दे नाल कहन लगे, सिखा काबल तू आए, तीन दिन हो गए ने तैनू रोंदे आ, सानू पता है सिखा साडे नाल बड़ा प्यार करना है, पर साडे वास्ते बेटा की लैके आए। साध संगत, गुरु किसे चीज का भुखा नहीं, गुरु ने बेटा क्यों मंगी, ए ते गुरु का कौतुक है। कहन लगे, सिखा साडे वास्ते बेटा की लियांदी। सिख हाथ जोड़ के कहन लगा, पातशाह मैं की देन जूगा, सब कुछ आपदा मैं सुनियारा वा, हाथियां दे दंद दा एक कंगन जिहदे विच हीरे जड़े हुए सन, मैं आपदे वड्डे मसंद चेतो नूं उदों दिता सी जद वो काबल गया सी। दूसरा कंगन जिहदे विच हीरे जड़े ने मैं लैके आया सां, वो कंगन मैं चेतो मसंद नूं दे दिता,
क्योंकि चेतो ने कहा सी कि सिखा तेरे नाल गुरु साहब जी बड़े नाराज ने, तू दरबार विच ना जाई। ए सुन के गुरु साहबा ने अपने दोनों हाथ अगे कर दिते ते नाले कहन लगे, सिखा ऐ देख मेरे हाथ ते खाली ने, तेरे कंगन मेरे कोल नहीं आए। सिख ने कहा, पातशाह मैं ता चेतो मसंद नू दिते सन, ते चेतो मसंद संगत च बैठा सी, उठ के खड़ा हो गया। कहन लगा, पातशाह ए झूठ बोलदा है, ए कंगाल कंगन कि

उस वक्त औरंगजेब सी। औरंगजेब दे जासूसा ने औरंगजेब नू जड़ी खबर भेजी, उहदे विच लिखिया है तकरीबन 50,000 दे करीब लोकां दा इकट्ठ सी। आनंदपुर साहब संगत बैठी, कीर्तन हो रहा, बड़ा आनंद आ रहा। सिंघासन ते गुरु साहिब जी विराजमान ने। अचानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चेहरे दा रंग बदली होया, चेहरे ते कठोरता आ गई। म्यान विचों कृपान खिंची ते ललकार के कहा, साध संगत मैनू इक सिर दी लोड़, पहला तां किसे नूं समझ ही ना आई। जदों दुबारा कहा मैनू इक सिर दी लोड़ है, हर पासे सहम छा गया कि इह की हो गया। गुरु साहिब जी अपने सिखां दे सिर मंगण लग पए। तीसरी वारी सिर मंगिया।

ते जड़े दूर दूर भज गए सन भजे भी जा रहे ने ते पिछे मुड़ मुड़ के भी देखते जाते ने कोई फड़न दे नहीं आ रहे पर पंजवीं तू बाद गुरु साहब जी दोबारा नहीं आए जड़े बैठे सन प्यारो भी करते पर समझ नहीं आती कि गुरु साहब जी सिर क्यों मंगते बड़ी देर हो गई बैठे उड़ीकते पे ने हुण गुरु साहब जी उस तंबू विच बाहर निकले कृपान म्यान विच है चेहरे ते हुण रौनक प्यार है ओ पंजो जिन्हां दे सिर वड्डे सन ओ ते जिउंदे ने इक वर्गे कपड़े पाए ने गात्रे कृपान सोहणियां दस्तारां हत्थां विच कड़े तेड़ कशहरे हाथ जुड़े ने पंजो जने पिछे पिछे में आ रहे ने जिवें अगे चंद ते पिछे सितारे तुरे आंदे गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह अपने सिंघासन ते बैठ गए सामने सर्वलोह दा बाटा पे है जिद विच पानी पाए विशकार दो तारा खंडा रखे।

साहिब सतगुरु गुरकल की धर पातशाह का जिन्हां ने यह हुक्म सुनिया नंदेड़ सचखंड साहिब पातशाह की हजूरी विच सजके जदो तख्त चवर दे मालिक साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब नूं थापिया गया इत्थे प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा ते हुक्म दे अंदर बड़ा फर्क है। प्रेरणा किसे नूं कीती जाए वह प्रेरिया जाए ना प्रेरिया जाए उहदी मर्जी। जो हुक्म किसे नूं सुनाया जाए जां तां हुक्म मन के प्रवान हो जाओ ते जां हुक्म अदूली करके गुनाहगारां दी कैटागरी शामिल हो जाए। हुक्म दा अर्थ दूजा नहीं निकलदा है, या वह मन्या जांदा है ते जां उसकी अवज्ञा हुंदी है। अवज्ञा करन वाले नूं जो सजा हुंदी है यह सारा संसार जानदा। हुक्म लॉ एंड आर्डर नूं कोई ना मन्ने ता जो उसका हशर हुंदा है, जो उहदे नाल वर्तारा वरदा है, किसी भी अग्ञानी तो अग्ञानी पुरश तो भी भुला नहीं। कलगीधर पातशाह का यह हुक्म है, सब सीखन को हुक्म है कि गुरु मानियो ग्रंथ। ते ये हुक्म कलगीधर का सुन के ओहदा कहाउण वाला कोई गुरु का सिख किसी देह दे अंदर गुरु का विश्वास डकी तुरिया मिले, ऐसी कलगी धर दे हुक्म की अदूली करन वाला अपने आप नूं सिख किवें इखला सकता है। उहदा तां इह हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभ को मिलवो चाहे खोज इन्ही मैं दे। ते जे गल्लां करनी है, जे बातां करनी है, जे दीदार करना है, ते बह जाओ हजूरी विच, सज जाओ आके इशनान करके। जंगदीए साहब की बख्शिश है भी जदों गल्लां करोगे तुहाडी रसना ती आप ही बोल बोल तुहानू सुनाई जाऊ, ऐ कर आ ना कर आ मार्ग अख्तियार कर, ए उत्तम है, ए प्रमाणिक है, ए ना प्रमाणिक है, तुहाडी रसना ते बैठ के तुहानू समझाई जाऊ। ऐसा होर चतर दुनिया का गुरु कौन हो सकता जिहड़ा तुहाडी रसना नूं वरत के आप ही तुहानू कही जाए, जंगदी बोलण वेले तुहानू ही गुरु बना दे। कैसा विचित्र साहब सतगुरु का एक करिश्मा है। ते जिन्हें भी प्रभु नूं खोजना है ते इहदे विच समाया है, ते राह दसेगा गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दसणगे भी गुरु अकाल पुरख की प्राप्ति का मार्ग की है। आपे दसणगे जो गुरु सतगुरु का जो सिख का आपे बोलणगे। ते जिहड़े कहिंदे ने

भावत और अन के सेव स्वात न जी को दान दियो इन्हीं को भलो और अन को दान में लागत नी को आगे फले इन्हीं को दियो जस जग में और दियो सब ठीक को मोह गृह में तनते मनते सिर लो।

आख्या फरमान दें। आम करके दुनिया कन रस विच उलझी है, ये आत्म रस दी खुराक है, आत्म रस जै जाने ही सो है खालस दी।

पलक ते गया पाताल नानक, नानक बिना जहान दी दिशा कोई ना, मशरक मगरिब जनूब शुमाल नानक, कदे काशी ते कदे प्रवेश मक्के, बनया सारयां दा सांझीवाल।

अकाल मूर्त अयोनि सहंग और प्रसाद जब आप सच युवा सच है भी सच नानक कोशी भी सच चक्र के नर्वर्ण जात हर पात नहीं जैन रूप रंग हरी प्री भूकन सत्य है अचल मूर्तन भव प्रकाश अमित तूज कह जय इंद्र इंद्राण शाहो शाहान गणिज फिर भ्रमण में ही सुर नारासुर नीत नीत मंडन कह तब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण समत सतपुरे आयु शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी और न सूझे दूजी ठार आर प्रयु तो द्वारी लेखा छोड़िया लेखा छूट है हम निर्गुण ले हो वारी सर्वक्षण सदा मेरवाना सबना भी आधारी नानक दास संत पाछा करियु राख लियु ए बारी सतगुर हुई दयाल ता श्रद्धा पूरी है सतगुर हुई दयाल ना कम हो चूरिया सतगुर हुई दयाल ता दुख न जानिया सतगुर हुई दयाल ता हर रंग माणिया

0: अपने पद करें प्रतपाला, अदरा तेरी हड़ियाई, नित नानक नाम तिहाई, अदरा तेरी हड़ियाई, नित नानक नाम तिहाई।
1: वाहे जी का खालसा, वाहे जी।

सारा दिन अखां वेंदियां रहिंदियां ने, थकदियां ही नहीं। पर किते गुरु के दर्शन करने पै जान, गुरुद्वारे जाना पै जावे, कन्ना नूं किते कीर्तन सुनना पै जावे, उकसा जाणगे ते चुगली निंदा वाले पासे दौड़दे ने। भाई साहब कहिंदे ने दर्शनां नूं किते वाहिगुरु जपना पै जाए ते पता नहीं की हो जांदा है। ते जे सारा दिन इनू छकांदे रहिए ते थकदी कोई नहीं, तां साहिब सच्चे पातशाह जी दे अनन सेवक भाई साहब भाई गुरदास ने सानू समझाउण दा यतन कीता है। भाई साहब कहिंदे ने रज ना कोई जीविया कूड़े परवासे, ते जे जिंदगी च सफल होना चाहुंदा है, जिंदगी च प्रफुल्लित होना चाहुंदा है, ते

आगे को किछ तुल्हा बांधो। कोई भरोसा नहीं इस शरीर दा, नाम दा तुल्हा तैयार कर जिदे तो तू चढ़ के पवजल पार कर जावे। सब कहंदे ने समा किसे दी इंतजार नहीं करदा।

सतगुरु कहंदे ने देह सदा नहीं रहनी। जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना तां एदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

शब्द गुरपीरा, शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा, शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग भौरन गुरत।

मुर्गे चढ़ ऊपर मेरे माथे माई माई चरण गुर मीठे माई चरण गुर मीठे वड़े पाग देवे परमेश्वर वड़े पाग देवे परमेश्वर कोट पला

पहले पैरे आपनी उठ के तीजे पैरे उठ के तुर पैण, क्योंकि पहले दो पैर आप कीर्तन नाम विच जुड़े रहिंदे ते जदों तीजा पैर हुंदा।

के बादशाह पिट हो रही है हुण इथो दी मेनू माफी दे दे। ते आपने फिर जाना व्यासा नदी तो जल दी गागर भरनी सिर ते चुकनी ते फिर सत्कार दे नाल मन विच पावना।

बिन बाजे कैसो नृतकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जेवा कहा को बक्ता, बिन श्रवना कहा को सुनता। बिन नेत्रा कहा को देखे, नाम बिना नर कहीं न लेखे। बिन विद्या कहा को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित। बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहा बैरागी, बिन हो त्याग कहा को त्यागी। बिन बस पंच कहा

गोविंद ना भजे अहं बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे छापर बांध सवारे तृण को द्वारे पावक जारे कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे मोढ़े वस्त्र का